0: जमुना का बोल रहा
1: था। जंगलों को जिंदगी setiap Ahad pukul 5.15 menit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.